समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

श्रोताओं सुनते हैं रवि की संगीत रचना में गोपाल सिंह नेपाली की गीत रचना, गाया है मन्ना डे, सुधा मल्होत्रा और हेमंत कुमार ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

श्रोताओं आप सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

श्रोताओं सुनते हैं रवि की संगीत रचना में गोपाल सिंह नेपाली की गीत रचना। गाया है मन्ना डे, सुधा मल्होत्रा और हेमंत कुमार ने।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।